0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: खुल्लम।

वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो रेडियो विश्वास।
0: मैम, मी नाशिकवरून बोलतोय।
1: हो, बोला ना।
0: मला एक गाणं द्यायचं होतं, मोहम्मद
1: हो, द्या ना।
0: अजीज यांचं गाणं आहे, आज कल याद कुछ और रहता नहीं। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने के पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आनंद
1: अच्छा।
0: बक्षी यांचं गाणं, लक्ष्मीकांत कारेला यांचं संगीत।
1: अरे वा, मस्त। खूप छान गायलं तुम्ही गाणं।
0: थँक्यू मॅम,
1: बस
0: थँक्यू।
1: ठीक आहे। कुठून बोलताय आपण?
0: माझ्या
1: ओके।
0: मित्रांचं नाव घ्यायचं होतं, विजय राऊत यांचं, आणि एक राजा भाऊ। थँक्यू।
1: धन्यवाद।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो रेडियो विश्वास।
0: मैं नासिक वरुण बोलतोय। मला
1: हो बोला ना।
0: एक गाणं द्यायचं होतं,
1: हो द्या ना।
0: मोहम्मद आजीज यांचं गाणं आहे, आज कल याद कुछ और रहता नहीं। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने के पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आनंद
1: अच्छा।
0: बक्षी यांचं गाणं, लक्ष्मीकांत कार्याला यांचं संगीत।
1: अरे वा मस्त, खूप छान गायलं तुम्ही गाणं।
0: थँक यू मॅम,
1: यस
0: थँक्यू।
1: ठीक आहे। कुठून बोलताय आपण?
0: माझ्या
1: ओके
0: मित्रांचं नाव घ्यायचं होतं, विजय राऊत यांचं आणि एक राजा भाऊ। थँक यू।
1: धन्यवाद।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार।

0: आशिकों के सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, के मेरा रफीक तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब।